0: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, अब प्रस्तुत छ हाम्रो बिहानी प्रसारण अर्थात प्रथम अधिवेशनमा अब उसो प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरूबारे संक्षिप्तमा जानकारी। अहिले 6:55 अनि 7 बजे सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समप्रसार गरी क्रमैले संस्कृत अनि हिन्दीमा समाचार। 7:05 प्रस्तुत गर्नेछौ कार्यक्रम गान्धी कथा। 7:25 सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट समप्रसार गरी नेपालीमा समाचार। यसै गरी 7:35 सुनाउनेछौ यस केन्द्रबाट कार्यक्रम प्रणाम सिक्किम। 8 बजे अनि 8:15 सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समप्रसार गरी क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजीमा समाचार। साथै 8:30 आकाशवाणीको उत्तर पूर्वी केन्द्र शिलङबाट पूर्वोत्तर समाचार। यसरी नै 8:40 प्रस्तुत गर्नेछौ नेपाली आधुनिक गीतहरूका कार्यक्रम गीतिमाला। 9 बजे सुन्नुहुनेछ आजका मुख्य समाचार। 9:02 सुनाउनेछौ कार्यक्रम चित्रांजली अनि 9:30 लिएर आउनेछौ लिम्बू लोकगीतका कार्यक्रम। 10 बजे पुनः सुन्नुहुनेछ आजका मुख्य समाचार। 10:02 प्रस्तुत गर्नेछौ कार्यक्रम ताजे तराने अनि 10:30 सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समप्रसार गरी एफएम गोल्डका कार्यक्रमहरू। त श्रोता, प्रस्तुत थियो हाम्रो प्रथम अधिवेशनमा प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरूबारे छोटो रूपरेखा। सो पूरा भयो। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौ। श्रोताहरूले अब सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समप्रसार गरी क्रमैले।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नार्वे, इटलीति देशानां 6 दिवसीय यात्रायां भविष्यति। पञ्चदेशयात्रायाः प्रथमपदे अद्य श्रीमोदी यूएई देशं गमिष्यति, यत्र सः राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति। द्विपक्षीय विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकार्ये तथैव परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च द्वौ नेतारौ विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। मेलनमिदं ऊर्जा सुरक्षा विषये केन्द्रीकृतं भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायां ब्रिक्स इति बहुदेशीय संघः बहुपक्षीयतां सुदृढं कर्तुं, सतत विकासं प्रवर्धयितुं, आर्थिक शक्तिं प्रवर्धयितुं, अधिक समावेशीय विश्वव्यवस्थायाः निर्माणार्थं च मिलित्वा कार्यं करिष्यति। ह्यः नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां विदेशमन्त्रिभिः प्रतिनिधिमण्डलप्रमुखैः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् उदयमानानां अर्थव्यवस्थानां मध्ये सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विक दक्षिणस्य आकांक्षाणां विकासाय च ब्रिक्स संघः महत्वपूर्ण मञ्चरूपेण उद्भूतः वर्तते। केन्द्रसर्वकारेण उक्तं यत् देशे पर्याप्तं असंस्कृततैलस्य, एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल ईंधनस्य, प्राकृतिक अनिल ईंधनस्य च उपलब्धतां सुनिश्चेतुं प्रभाविपदानि गृहीतानि सन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां अन्तर्मन्त्रालयस्य वृत्तान्तस्य समये पेट्रोलियम प्राकृतिक अनिल मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवपदासीना सुजाता शर्मा अवदत् यत् देशे सर्वत्र गृहोपयोगी एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल ईंधनस्य आपूर्तिः सुचारुरूपेण प्रचलति। नीट इति आगामी राष्ट्रिय पात्रता सहित प्रवेश परीक्षायाः सज्जतायाः समीक्षां कर्तुं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानस्य निवासस्थाने उच्चस्तरीय सभा आयोजिता। सभायां नीट परीक्षायाः सुचारुतया कुशलतया च संचालनस्य विविध पक्षेषु विस्तृत विमर्शाः कृताः। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीसत्यसाईमण्डलस्य पुट्टपर्ति इत्यत्र अनेक वैमानिक रक्षापरियोजनानां आधारशिलास्थापनकार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् विमानविकाससंस्थायाः विमानसमायोजनस्य उड्डयनपरीक्षणकेन्द्रस्य च शिलान्यासः भविष्यति। विमानस्य एकीकरणस्य, परीक्षणस्य, प्रमाणीकरणस्य च एषा परियोजना

0: उन्नत मध्यम युद्ध विमान कार्यस्य विकासं त्वरयिष्यति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अद्य महाराष्ट्रस्य सतारा इत्यत्र प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनायाः लाभार्थी सम्मेलने एवं महाराष्ट्र आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोहे च भागं ग्रहीष्यति। उत्तर प्रदेशे विगत षट्रिंशत् होरासु झंझावात चक्रवात विद्युत्पातादिभिः सह अतिवृष्टिकारणात् न्यूनातिन्यूनम् एकादशोत्तर एकशतं जनाः मृताः, द्विशताधिकाः जनाः वृणिताः सन्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जिलाधिकारीं तथा संबंधित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। उधमपुरा मण्डलस्य शिवपार्वती तीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वती मेला इति प्रसिद्धा वार्षिक मौंगरी मेला अद्य आरभ्यते। धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुरा मण्डल प्रशासनेन मौंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते शतं किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिम प्राधिकरण योजनायाः अन्तर्गतं आभूषण निर्यातकाः शून्य शुल्केन असंस्कृत वस्तूनां अथवा निवेश सामग्रीणां आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं षट् स्तोभकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्ध सप्तवादने लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की छह दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम मंजूरी योजना के

0: संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलो और सांडा में दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यसका साथै श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई न्यूज हेर्नु भएको छ। समय यस बेला हाम्रो स्टुडियोको घड़ीमा बिहानीको 7:05 भइरहेको छ र अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम गान्धी कथा अन्तर्गत एक चिन्तन, आत्मनिर्भरता र स्वदेशी आन्दोलन। सुमन गजमेरबाट।

तू तारे सीता।

0: एवं सम्पादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1873 आजकै दिन ईस्ट इण्डिया कम्पनी विघटन गर्नको लागि इंग्ल्याण्डमा एउटा प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। 1958 आजकै दिन अरूणा असफ अली दिल्लीको मेयर बनेका थिए। आजकै दिन 1958 नै कसैलाई दिइने उपहारमाथि शुल्क लाग्न थालेको थियो। 1992 आजकै दिन हर्षद मेहतालाई निष्कासित गरिएको थियो। 1993 आजकै दिन केम करियापा भारतीय सेनाका पूर्व फिल्ड मार्शल एवं मेजर जेनरलको 93 वर्षको आयुमा मृत्यु भएको थियो। 1998 आजकै दिन प्रसिद्ध सितार वादक पण्डित रविशंकरले 1998 पोलार म्यूजिक अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको थियो। लौत श्रोता, हाम्रो समय पनि सकिएको छ। भोलि बिहान फेरि यस्तै रोचक जानकारी लिएर तपाईँ समक्ष आउनेछौ। हवस्, आजलाई बिदा चाहन्छौ।
1: नमस्कार। यतिन्जेल श्रोता, प्रस्तुत थियो विविध जानकारी अनि मनोरञ्जनले भरिएको कार्यक्रम प्रणाम सिक्किम। अब श्रोताले सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजीमा समाचार, साथै आकाशवाणीको उत्तर पूर्वी केन्द्र शिलङबाट पूर्वोत्तर समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
3: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से LNG तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
4: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
2: रक्षा मंत्री

0: रूपये 68 पैसे और डीजल 93 रूपये 14 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108 रूपये 74 पैसे और डीजल 95 रूपये 13 पैसे प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103 रूपये 77 पैसे और डीजल का मूल्य 95 रूपये 35 पैसे प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पुद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी।

0: वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्रिपरिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वे यहां कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
1: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालेंडुगा में स्काईवॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी एसआईआर, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरूआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sanda World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said, "Energy remains a key pillar of the relationship." He noted that the UAE was India's 4th largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
5: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supply to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE saw in wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure, while India's Shandi Act, which opens the nuclear sector to private players, has created fresh scope for collaboration in reactors, including small modular reactors. Both sides are pushing to settle energy transactions in rupees and dirhams, reducing dollar dependencies in bilateral trade. From oil to LNG, clean energy to nuclear, the India-UAE energy partnership is being redrawn for a decarbonizing world. Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
4: On the occasion of the Prime Minister's 8th visit to the Emirates, Indian Ambassador to the UAE, Deepak Mittal, said the visit of the Prime Minister is highly opportune.
6: UAE has emerged as a very close 3rd largest trade partner for India. Our bilateral trade has crossed $100 billion after we have signed Comprehensive Economic Partnership Agreement in 2022. The visit of the Prime Minister is very opportune, happening at a time when the region is going through some unprecedented times. The Prime Minister has been in touch with the UAE leadership. So this is a moment when it will help and enable to express our solidarity.
4: Meanwhile, UAE's Minister of State for International Cooperation, Reem Binte Ibrahim Al-Hashmi, has said the government is looking forward to the occasion with great excitement. She said that Mr. Modi is a key figure of friendship, of long-standing partnership and a true treasure to the leadership and to the people of the UAE. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen

जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप इसे सुन रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आर्ष रेखा क्रिस्टल वॉइस लेकर दिल का मेल बॉक्स। तो चलिए दिल के मेल बॉक्स में आपके मेल्स हम तक पहुंच जाएं, इससे बेहतर क्या होगा। उसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप करना है किस पर 9868687 पर, यानी 9868687 पर, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं fmgold@gmail.com पर। जी हाँ, fmgold@gmail.com। याद रखिएगा कि एक ही जगह आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप कीजिए या ईमेल तो काफी है, और एक ही मैसेज काफी है। इतने सारे मैसेजेस मत किया कीजिए, क्योंकि जो भी ज्यादा मैसेज करेगा मैं उसके नाम को शामिल नहीं करूंगी, फिर मत कहिएगा। और फिलहाल क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस शुरुआत से ही आने शुरू हो जाते हैं, तो चलिए शामिल कर लेते हैं कुछ मैसेजेस को। हमें लिखा है अतर सिंह, राजकुमारी अनुज, अंजलि, डॉक्टर पारुल, अद्विक समयपुर दिल्ली से हमें लिख रहे हैं। और हमारे पास मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इस्टार, नरगिस खातून का मैसेज दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से पहुंचा है। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल ने हमें लिखा है। और हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है रघुबीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू का। और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल का मैसेज। और ये मैसेज है हमारे पास कहां से, वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार और प्रमिला भावसार का। और इसके अलावा हमारे पास प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा का जनकपुरी से मैसेज पहुंचा है। और हमें लिखा है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुचा सिंह पाठक ने, कहां से, अनारकली बाजार जगराव से। और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, जैसे मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का मैसेज, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का मैसेज। और हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी का। और हमें लिखा है धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिपा, ईशान चिपा और पूजा परिहार ने भोपालगढ़ राजस्थान से। और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे मैसेजेस लगातार पहुंच रहे हैं। हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल ने हमें लिखा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से, बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार, दिनेश चौहान राजदेवरा से हमें लिख रहे हैं और बाड़मेर से। इसके अलावा डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा का हमें मैसेज पहुंचा। पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, बलवीशा प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी का मैसेज। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे रिपीट मैसेजेस, कोशिश करिए दोबारा ना भेजिए। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिलू नायक का कैथल हरियाणा से हमें मैसेज पहुंचा है, मधु नायक का और पहाड़गंज मुल्तानी ठाणा से भी। इनमें कुछ लोगों ने हमें लिखा है मोहल्ला चोखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान रजान और अवान, पूरे आभासी परिवार का मैसेज। और मामुल वाणी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडोकार का मैसेज हमें मिला। और इसके साथ साथ ये मैसेज हमें मिला है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का छत्तीसगढ़ से। और पूजा पायल और जगदीश जोहारी, प्रवीण सोनी गुजरात गांधीग्राम से हमें लिख रहे हैं। और संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, पा डिंगिया ने बागपत उत्तर प्रदेश से हमें लिखा है। अजीत पावसार का एक और मैसेज हमें पहुंच गया है और बहुत सारे रिपीट मैसेज है, रिपीट मत करिए प्लीज। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर शिंदा, तस्वीर, जस्सी, सीता और गीता का मैसेज हमें मिला। और इसके अलावा मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह का मैसेज दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमें मिला। बिमला अनेजा, सतीश अनेजा का हमें मैसेज मिला है चंडीगढ़ से। और हमें लिखा है किसने, वणिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ने और सुरेश नारंग।

अच्छा नारंग सोनाली नारंग ने हमें लिखा है सहारनपुर से। ये मैसेज ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर अंसारी और मेहराज जहां का आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, और सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, कंचन कुसुम, प्राची और प्रवीण पुजारी का मैसेज। और साथ में हमें लिखा है जय विहार नजफगढ़ से शाहरुख फारूक, शबनम और शहनाज ने। दिल्ली नांगलोई से राजेंद्र जटोलिया, उषा जटोलिया, कृष्णा और पूजा, कोमल और आरफ का मैसेज हमें मिला। और इसके साथ साथ बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन फिलहाल आपको जरूर एक मैसेज के साथ हम शामिल कर लेते हैं। और ये हमें भेजी है फरमाइश किसने, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, सरधना मेरठ से, आदि जैन, अंश जैन और भव्य जैन के साथ हमें लिख रहे हैं और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत फिल्म कश्मीर की गली से रफी साहब की आवाज में।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वेलकम बैक। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है दिल का मेल बॉक्स। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। और आपके मैसेजेस लगातार हमें मिल रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कुछ मैसेजेस को शामिल करने की। आशीष जगदेव का हमें मैसेज मिला है, कहां से नहीं लिखा, गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी हिसार से हमें लिखा है। सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला, नवीन मंदीप, प्रियंका, सपना, नीतू कार्तिक और वेदांश जांगड़ा ने। और इसके अलावा हमारे पास भावनी गढ़ पंजाब से राजेंद्र कुमार सचदेवा का मैसेज पहुंचा है। हमें लिखा है मुंबई से आशीष गायकार ने। और इसके साथ हमारे पास नवीन भाटिया का मोतीनगर से मैसेज पहुंचा। तरुण गर्ग का मैसेज है, कहां से है नहीं लिखा। और ये मैसेज हमें मिला संतोष सक्सेना का। और इसके अलावा हमारे पास कृष्ण कुमार गुप्ता का भटीपुरा मोहब्बत उत्तर प्रदेश से मैसेज पहुंचा। और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास लगातार आ रहे हैं। सतपाल ग्रीवाल का फरीदाबाद से मैसेज है हमारे पास। अमरेश सुभाष वैद्य का नालासुपारा वसई मुंबई से मैसेज। और कैलाश शर्मा गुरुग्राम से हमें लिख रहे हैं। साथ ही हमें लिखा है मंटू कुमार ने मुंबई से। और भटीपुरा मोहब्बा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता का मैसेज। और ये राजीव द्विवेदी दिल्ली से हमें लिख रहे हैं। विजय नारंग नन्हे पहलवान बाजार सीताराम से हमें लिख रहे हैं। और इसके अलावा जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित ऋतु, मुकेश जगताप का मैसेज। और मुंबई से अनु बरजात्या, शमसुल कमर राही, अनुराज बेनारा का मैसेज। बहुत सारे मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं तो प्लीज रिपीट मत करिए। मजनू कटीला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का मैसेज। और ये हमें मिला है मैसेज जमुना देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बीबी आराध्या साहू का, कहां से बबलू साहू के साथ, कोहरा जिला, नागर कोहरा जिला, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। और नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल का मैसेज। मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मोहरकर का मैसेज। और ये हमें लिखा है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय का मैसेज। और हमें एक और मैसेज पहुंचा है एसके खन्ना का। और इन्होंने कहां से लिखा है ये तो मुझे नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं। और इसके अलावा सत्यप्रकाश का ओडिशा से हमें मैसेज मिला। और हमें लिखा सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, सुनाली नारंग ने। बहुत सारे मैसेजेस रिपीट हैं और इसीलिए ढूंढने में वक्त चला जाता है। पंकज मोहड़ अमरावती महाराष्ट्र से हमें लिख रहे हैं। और साथ ये सुनील भांबू का मैसेज हमें मिला है बेंगलोर से। और आज इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो ऐसी शुभकामनाएं। फरीदाबाद से सुशील कुमार लास्कर का मैसेज हमें मिला है। प्रेषिका श्रीमती मनीषा साखर दांडे जबलपुर से हमें लिख रहे हैं। और हमें लिखा गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा ने। एक और मैसेज कर दिया आपने सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का शांतिनगर सोनीपत से मैसेज। और हमें ये मैसेज पहुंचा है मंटू कुमार का मुंबई से। फिर से वही रिपीट मैसेजेस मेरे सामने आते हैं तो अच्छा नहीं लगता। गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का मैसेज। और हमें लिखा है कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्ने लोखंडे और रक्षिता लोखंडे ने यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण लोखंडे के साथ। और इससे पहले कि कुछ और मैसेजेस को मैं शामिल करूं, ये हमें मैसेज पहुंचाया है किसने, महेश अग्रवाल और मीना अग्रवाल ने बहादुरगढ़ हरियाणा से। और साथ ही हमें सुरेश नारंग ने लिखा है नन्हे पहलवान के साथ। ये कहते हैं कि आज हमारे दोस्त सुरेंद्र खुराना जी का जन्मदिन है तो उन्हें विश कर दीजिए और ये गीत सुना दीजिए। तो लीजिए, ये रहा आपके लिए ये खूबसूरत गीत आज सुरेंद्र खुराना जी को, चूंकि हमारे बहुत पुराने श्रोता भी हैं। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं रफी साहब और साथियों की आवाज में ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

तो भाई अब थोड़े से और मैसेजेस को जल्दी से शामिल कर लूं क्योंकि वक्त अब नहीं बचा है ज्यादा आपसे बातें करने का। तो हमारे पास मैसेजेस पहुंचे हैं जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु, और इन्होंने हमें लिखा है कहां से, उत्तम नगर हॉलीचौक से। ओम प्रकाश तेगचंदानी ग्रेटर कैलाश से हमें लिख रहे हैं, गांव कलाना तहसील भादरा से हमें हनुमानगढ़ से लिखा है विक्रम कनवासरा, सचिन कनवासरा, सतीश और योगेश ने युद्धव और कुंदन के साथ। और इसके साथ ही दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से हमें लिखा है किसने, अभय कुमार, सनातनी शिवानी, प्रियंका, मुनि देवी, शौ, जयप्रकाश, रिया जिया, टूसी, आरुषि, अनिरुद्ध, अजय कुमार, रिमी और तनुश्री ने और बसंत कुमार ने और बहुत सारे परिवार के जन हमें सुन रहे हैं। रुपेश संगई, महेश संगई, प्रगेश, प्रीतेश और पूरे संगई परिवार का हमें परभणी से मैसेज पहुंचा और हमें लिखा नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, रसीद वारसी और अमन अवासी यशफ ने, और ये कहां से लिख रहे हैं, मारहरा दरवाजा एटा से। और इसके अलावा नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान भारती, सुफियान बलीमारान से हमें लिख रहे हैं, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार का हमें गांव फ्रांसी हिसार से मैसेज मिला है और हमें लिखा है हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा ने, साथ में नवीन भाटिया ने मोतीनगर से। बहुत सारे रिपीट मैसेजेस हैं, रमेश चिक, रेखा चिक, करण चिक ने हमें यादव रचना के साथ हमें लिखा है सभी के साथ संगम विहार से, और नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू का उत्तराखंड से मैसेज हमें मिला और हमें लिखा तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राज, चैतन्य मस्कीन, मेघा ने चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशव विधान ने। इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है भारत भूषण का, कहां से नहीं पता, अशोक कुमार विद्यार्थी, मधु विद्यार्थी, दीपिका विद्यार्थी, मयूर विहार दिल्ली से हमें लिख रहे हैं, यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ हाशमी और कलीम अंसारी का बस्ती गंज टुंडवाड़ा से हमें मैसेज पहुंचा है, शेरवानी स्कूल गंज टुंडवाड़ा से आफताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, अनवर, लुबना और आलिया का मैसेज। और फिलहाल एक गीत भी आपकी पसंद का मैं ऑनर करने जा रही हूं, तो क्योंकि वक्त अब ज्यादा नहीं बचा है तो बाकी के मैसेजेस जो रह गए हैं उनके लिए माफी चाहती हूं। वैसे इंदिरा नगर भवरपुर से राधे श्याम देवांगन और चंपा देवांगन का भी मैसेज हमने शामिल कर लिया है, तो चलिए गीत शामिल करते हैं। और ये गीत हमें लिखा है खानदान फिल्म से, सुनना चाहा है आफताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, अनवर, लुबना और आलिया ने। ये रहा आपकी पसंद का गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को हुई परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस समय नीट परीक्षा के संबंध में बयान दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: जो एग्जामिनेशन हो गई, उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए विस्तार से एनटीए एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल, शाम तक आपको फिर एनटीए के पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, तो परीक्षा देने के बाद उस शहर से छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं।
0: इससे पहले आगामी नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल रात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से आयोजित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रूपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रूपये प्रति लीटर हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा मध्य विस्तार क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण के अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कल पेइचिंग में वार्ता की। दोनों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद साझा सहयोग पर बल दिया। श्री ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह उनकी पहली चीन यात्रा थी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 बच्चों सहित 21 लोग मारे गए हैं और 45 घायल हुए हैं। यूक्रेन की आपात सेवाओं के अनुसार कल हुए इस हमले में मकानों, एक स्कूल, एक पशु चिकित्सा केंद्र और अन्य नागरिक भवनों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a six-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy this morning. On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues.

और ये इंसानों को दिए गए बहुत ही कीमती तोहफे हैं, जिनकी कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। प्रकृति के करीब जाकर आप जितना सुकून का अनुभव कर सकते हैं, उतना आनंद किसी भी आराम की वस्तु से कभी नहीं मिल सकता। वैसे जब बात प्राकृतिक खूबसूरती की हो तो भारत को कभी भी आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। विविधताओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध भारत वैश्विक पर्यटन के रूप में उभरा है। लाखों की तादाद में दुनिया भर के सैलानी हर साल यहां तक का सफर तय करते हैं। भौगोलिक नजरिए से देखें तो भारत एक खूबसूरत और काफी खास देश है और आज यहां के अनमोल प्राकृतिक खजानों में से एक बहुमूल्य मोती जिस जगह की आज हम सैर पर निकलेंगे वो है कुद्रेमुख। जी हाँ, एक घोड़े के चेहरे की आकृति वाला ये पर्यटन स्थल दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। अपनी पहाड़ी चोटी, ट्रैकिंग, एडवेंचर और नैसर्गिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध ये जगह राज्य के चिकमंगलूर जिले का हिस्सा है। कुद्रेमुख हर तरह के सैलानियों का स्वागत करता है। क्या कुछ है यहाँ पर देखने के लिए सब कुछ जरूर बताऊंगी मैं, लेकिन उसके लिए आपको रहना होगा मेरे साथ तस्वीर के इस सफर में। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी रेखा क्रिस्टल वॉइस। तो चलिए आज चलते हैं इस खूबसूरत जगह की सैर पर जो कि कर्नाटक का कुद्रेमुख है। तो चलिए इससे पहले कि आगे इसके बारे में कुछ और बताऊं, एक गीत के साथ शुरुआत करते हैं। लव स्टोरी फिल्म से लता जी और अमित कुमार साहब की आवाज में ये रहा खूबसूरत गीत आपके लिए।

जी हाँ, जल्दी से आ जाइए क्योंकि आज हम निकल चुके हैं कर्नाटक के कुद्रेमुख की यात्रा पर। और यहाँ पर क्या कुछ है देखने के लिए ये जल्दी से आपको बताने जा रही हूँ, या यूं कहूं कि घुमाने जा रही हूँ। कुद्रेमुख पीक ट्रैक है एक यहाँ पर। कुद्रेमुख का सबसे मुख्य आकर्षण यहाँ की कुद्रेमुख चोटी है, जो दूर दराज के ट्रैवलर्स ट्रैकर्स को आने का आमंत्रण देती है। यहाँ पर समुद्र तल से 1894 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कुद्रेमुख पीक साहसिक पहाड़ी रास्तों, वनस्पतियों और बहुत सारे अलग अलग ट्रैक के लिए जानी जाती है। बहुत से ट्रैक्स हैं यहाँ पर। ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग जैसी जगह है ये, और इस चोटी से देखे गए प्राकृतिक नजारों का कोई जवाब नहीं है। तो अगर आप यहां से इनका नजारा लेंगे तो सचमुच आपका मन यहीं रह जाएगा। खासकर इस चोटी से अरब सागर को ढके अनंत आकाश और बादलों को देखना बहुत ही रोमांच भरा होता है। छोटी सी ये जो पहाड़ी है ये बहुत ही खूबसूरत है, और इस जगह पर पहुंचने का ट्रैकिंग रूट भी काफी रोमांचक है, जो ट्रैकर्स को काफी आनंदित करने का काम करता है। ये चोटी कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, और यहां अगर मैं बात करूं और भी बहुत कुछ है घूमने के लिए। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हरे भरे पहाड़ों के बीच स्थित कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान अपने प्राकृतिक खजाने के लिए काफी लोकप्रिय है। 600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह राष्ट्रीय उद्यान राज्य में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, जिसे 1987 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। ट्रैकिंग मार्ग विभिन्न तरह की वनस्पतियां, जंगली जीव और बहुत सी कुदरती खजानों से सजा यह उद्यान एक बहुत ही खूबसूरत वन्य इलाका है, जहां पर आप जा सकते हैं। ये जगह प्रकृति प्रेमियों से लेकर एडवेंचर के शौकीनों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। रोमांचक एहसास पाने के लिए दूर दराज से पर्यटक यहां का सफर करते हैं। आप वन्य जीवों में बाघों, तेंदुओं और जंगली कुत्तों जैसे स्तनधारियों को देख सकते हैं यहां पर, और ये सचमुच आपके लिए एक बहुत ही प्यारा अनुभव होगा। हनुमान गुंडी फॉल्स है एक यहां पर, जिसे आप देख सकते हैं। पहाड़ियों और उद्यानों से अलग आप कुद्रेमुख में हनुमान गुंडी फॉल्स की सैर का आनंद ले सकते हैं। हनुमान गुंडी फॉल्स को सुथानाबे फॉल्स या सुथानबी फॉल्स भी कहा जाता है, जो कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के पहाड़ी परिवेश में स्थित है। और ये वाटरफॉल राष्ट्रीय उद्यान में करकला और लक्ष्या बांध के बीच मौजूद है। इस फॉल्स की ऊंचाई लगभग 3268 फीट के आसपास है, और यहां पानी 22 मीटर की ऊंचाई से करीब करीब गिरता है। मैंगलोर से यहां तक की दूरी करीब 80 किलोमीटर के आसपास है। गर्मी से राहत पाने के लिए ये फॉल्स एक बहुत ही खास जगह हो सकती है आपके लिए। अगर आप कुद्रेमुख आए तो यहां का अनुभव जरूर आपको करना चाहिए। इसके अलावा एक जगह है जिसे कलासा कहा जाता है। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित कलासा एक खास पर्यटन स्थल है, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ये धार्मिक नगर भद्रा नदी के किनारे पर स्थित है, और इस स्थल की उत्पत्ति के पीछे पौराणिक और कई कारण बताए जाते हैं। वर्षावन से घिरा हुआ ये स्थल प्राकृतिक और आध्यात्मिक रूप से काफी खास माना जाता है, और यहां के स्थानीय लोग ज्यादातर किसान हैं, जिनके खेत खलिहान भद्रा नदी पर ही निर्भर हैं, इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यहां की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है, जो अच्छी कॉफी और बाकी जड़ी बूटियों के उत्पादन के लिए भी बेस्ट मानी जाती है। इसके अलावा इसके यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस ये जगह जो है वो गुफा में स्थित देवी भगवती के मंदिर और एक वराह के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा कलासा श्री कालेश्वर मंदिर का भी एक स्थान है। कहा जाता है कि यहां पर भी भगवान शिव को बहुत कह सकते हैं ये समर्पित जगह है, और उन्हें बहुत माना जाता है, वहां उनकी पूजा की जाती है। तो आप यहां पर भगवान शिव को अगर मानते हैं, और ऐसे लोग जो उनकी पूजा करते हैं वो यहां जा सकते हैं। इसके अलावा पर्यटन के लिहाज से भी ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। एक और जगह है होरानाडु। अगर मैं बात करूं तो बाकी जगहों के अलावा आप कर्नाटक के होरानाडु स्थल की सैर भी कर सकते हैं, इसका आनंद भी ले सकते हैं। ये एक धार्मिक जगह है, जो आदि शक्ति मका श्री अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर के लिए जाना जाता है। हिंदू आस्था का केंद्र है ये, और ये दूर दराज के तीर्थयात्रियों और भक्तों को आकर्षित करता है। कर्नाटक के कुद्रेमुख की यात्रा पर हैं आज आप और हम, और भी बहुत कुछ बताऊंगी यहां के बारे में, लेकिन इस गीत के बाद। तो ये रहा तीसरी मंजिल फिल्म से आपके लिए रफी साहब और आशा जी की आवाज में खूबसूरत गीत। ये रहा

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे मैं अपनी तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ आकाशवाणी को, क्योंकि आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। स्पेशली ड्यूरिंग माई यूथ डेज, मैं युववाणी में अपनी कलम से लिखी हुई कुछ कविताएं पढ़ने जाती थी, और वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं अपने दिल की बात पूरी बोल पाती थी। बहुत लोग मुझे सुनते थे और मुझे बहुत सारी तारीफें भी मिलती थी, और तारीफ के साथ मुझे जो छोटा सा अमाउंट मिलता था, मैं 90s की बात कर रही हूँ, वो बहुत कीमती होता था। मुझे जो वहां से सम्मान मिला वो भी बहुत ही दिल को छू लेने वाला था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी को।

5.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आर्शिरेखा क्रिस्टल वॉइस सुन रहे हैं हम तस्वीर और तस्वीर में आज हम निकले हैं कर्नाटक के कुद्रेमुख। तो वही कुद्रेमुख जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि कुद्रेमुख का जरूर कुछ कर्नाटक भाषा में अर्थ है, तो बता दूं आपको कि कन्नड़ भाषा में कुद्रेमुख का अर्थ है घोड़े का चेहरा और

इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा, क्योंकि ये जो पहाड़ी है ये कुछ कुछ घोड़े के मुख के जैसी नजर आती है और इसीलिए इसे कुद्रेमुख कहा जाता है। कुद्रेमुख में बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, बहुत सारी प्लेसेस हैं, जरूर बताऊंगी, लेकिन ब्रेक के बाद मुझे पता है कि आपको इंतजार रहता है गीत का, तो चलिए गीत सुनते हैं। तीसरी मंजिल फिल्म से रफी साहब की आवाज में खूबसूरत गीत आपके लिए।

तो भाई पीछे पीछे चलते रहिए आप हमारे, क्योंकि आज हम आपको कर्नाटक के कुद्रेमुख की यात्रा पर लेकर चले हैं। तो भाई कर्नाटक के कुद्रेमुख में और क्या है जानने के लिए, ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। पश्चिमी घाट के मध्य में स्थित कुद्रेमुख चिकमंगलूर जिले में फैला है और ये कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, जो पश्चिमी घाट का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण केंद्र है। कन्नड़ भाषा में जैसा कि मैंने कहा, कुद्रेमुख का अर्थ होता है घोड़े का चेहरा, जो इस चोटी के विशाल विशिष्ट आकार की वजह से बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि ये घोड़े के चेहरे से मिलती जुलती है। अरब सागर की ओर देखने वाली विशाल पहाड़ियां, गहरी घाटियों और ऊबड़ खाबड़ चट्टानों से जुड़ी हैं। लगभग 2000 सालों से कुद्रेमुख पश्चिमी तट के नाविकों के लिए एक मार्गदर्शक रहा है। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में बारिश से निर्मित भूभाग बहुत ही खूबसूरत है और ये इलाका मनमोहक गांवों से भरा है। यहां आपको चाय, कॉफी के बागान, ताड़, इलायची और आम के पेड़ भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप यहां जा रहे हैं तो यहां की चाय का स्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, एकदम तरोताजा कर देगी आपको। वेल, चाय पीजिए, तब तक एक गीत सुनाती हूं और ये गीत तलाश फिल्म से लता जी और रफी साहब की आवाज में। ये रहा आपके लिए।

0: हवस् श्रोता कलाकार उदित नारायण झा हरिहरन अनि कैलाश खेरको स्वरमा रहेको यसै गीतको साथ विभिन्न हिन्दी फिल्मी गीतहरू सुनाउने क्रम यही समाप्त हुँदछ। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। साथै यस समय श्रोताहरूले हामीलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज अनि न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता अब प्रस्तुत छ अनुकुमारी गुप्ताबाट हिन्दी भाषा पाठ।
1: नमस्ते बच्चो।
2: नमस्ते गुरुमा।
1: बच्चो आप अपना परिचय दीजिए।
2: मेरा नाम डॉली कुमारी रजक है। मैं कक्षा 7 की छात्र हूँ और मेरी विद्यालय का नाम पालजर नामगिल सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल है।
3: मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैं कक्षा 7 की छात्र हूँ और मेरे विद्यालय का नाम डेफोडिल सोम सेकेंडरी स्कूल है।
1: बहुत अच्छा, आप दोनों एक ही क्लास में हो। बच्चों आप लोग व्याकरण पढ़े हो?
2: जी गुरु माँ।
1: पूजा तुम बताओ क्या क्या पढ़े हो?
3: लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम।
1: डाली तुम?
2: विशेषण, कारक, सर्वनाम, संज्ञा।
1: बहुत अच्छा, आप लोग को व्याकरण का भी ज्ञात है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग काल पढ़ेंगे। सीखोगे ना बच्चों?
2: जी गुरु माँ।
1: ठीक है, काल के अर्थ है कि समय, क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य होने या करने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं। जैसे कल मैं पिकनिक पर गई थी, आज मैं भी पिकनिक पर जा रही हूँ, कल मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाऊंगी। जैसे कि गई थी, बीता हुआ समय, जा रही हूँ वर्तमान समय, जाऊंगी आने वाला समय। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। अच्छा पूजा तुम बताओ काल किसे कहते हैं?
3: क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य होने या करने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं।
1: बहुत अच्छा। डॉली तुम बताओ काल के कितने भेद होते हैं?
3: काल

0: के दो भेद होते हैं।
1: नहीं डॉली, काल के तीन भेद होते हैं। वर्तमान काल, जो समय चल रहा है, भूतकाल, जो समय बीत चुका है, भविष्यकाल, जो समय आने वाला है। वर्तमान काल, वर्तमान यानी चल रहा समय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले और क्रिया व्यापार का वर्तमान समय में पता चले, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम अभी अभी आया है, वर्षा हो रही है, मोहन पढ़ रहा है, ये हम लोग को क्या ज्ञात हो रहा है? वर्तमान काल। पूजा तुम बताओ, वर्तमान काल किसे कहते हैं?
2: क्रिया के जिस रूप से उसे वर्तमान समय में होने का पता चले, उसे वर्तमान काल कहते हैं।
1: बहुत अच्छा डॉली, तुम उदाहरण दो।
3: छात्र पाठ पढ़ रहे हैं, दादी गीता को सुला रही है।
1: ये हम लोग का क्या हो गया? वर्तमान काल यानी चल रहा समय। दूसरा भूतकाल, भूत यानी बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले, उसे भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले, उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि से होती है। जैसे रमेश पटना गया था, वह खा चुका था, वह आया था। इसमें क्या आ रहा है? गया था, चुका था, आया था, ये हम लोग को भूतकाल की पहचान करा रहा है। पूजा तुम उदाहरण दो भूतकाल का।
2: वह लिख रहा था, वह लिखता था।
1: लिखता था, लिख रहा था, ये हम लोग को भूतकाल की पहचान हो रहा है। ठीक है बच्चों?
4: जी गुरु माँ।
1: भविष्यकाल यानी आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले, उसे भविष्यकाल कहते हैं। इससे आगे आने वाले समय का पता चलता है। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं, वे भविष्यकाल होते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, खाना कुछ देर में बन जाएगा, राजू देर तक पढ़ेगा। इसमें जाऊंगा में क्या गया? गा आ रहा है ना पीछे?
4: जी गुरुमा।
1: बन जाएगा, पढ़ेगा, ये सब हम लोग को भविष्यकाल का बोध हो रहा है, यानी आने वाला समय। अच्छा पूजा तुम उदाहरण दो भविष्यकाल का।
2: दीपक अपना जन्मदिन मनाएगा, तन्मय अपना गृह कार्य करेगा।
1: दीपक अपना जन्मदिन मनाएगा क्योंकि उसका जन्मदिन आने वाला है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपना जन्मदिन मनाएगा। ठीक है बच्चों?
4: जी गुरु माँ।
1: अब हम लोग का वर्तमान काल। वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता ना चले, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया से क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान में होने का पता चलता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, वह गेंद खेलता है, सीता पढ़ती है, ये हम लोग को क्या ज्ञात हो रहा है? सामान्य वर्तमान काल। अच्छा पूजा तुम बताओ, सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं?
2: क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता ना चले, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं।
1: बहुत अच्छा डॉली, तुम बताओ वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं?
3: वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं।
1: बहुत अच्छा, क्या क्या होता है बताओ?
3: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल।
1: दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि आते हैं, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे श्याम गेंद खेल रहा है, वह घर जा रहा है, अनीता गीत गा रही है, रहा है, रही है, इससे हम लोग को क्या ज्ञात हो रहा है? ये अपूर्ण वर्तमान काल होता है। ठीक है बच्चों?
4: जी गुरु माँ।

0: डाली, तुम बताओ अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं?
1: क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं।
0: पूजा तुम उदाहरण दो।
2: किसान खेत में हल चला रहा है, डॉक्टर मरीज को देख रहा है।
0: किसान खेत में हल चला रहा है, इससे हम लोग को अपूर्ण वर्तमान काल का बोध हो रहा है। तीसरा, संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने पर शक हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों के अंत में था, होगा, थी, होगी, थे, होंगे आदि आते हैं उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसमें उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, जैसे सविता पत्र लिखती होगी। इसमें होगी में क्या आया? गी आया ना?
1: जी गुरुमा।
0: वह गाता होगा, राम खाता होगा, रमेश जाता होगा, ये हम लोग को क्या बोध हो रहा है? संदिग्ध वर्तमान काल का बोध हो रहा है। पूजा तुम उदाहरण दो संदिग्ध वर्तमान काल का।
2: गाड़ी आती होगी, बच्चा रोता होगा,
0: ये हम लोग को संदिग्ध वर्तमान काल का बोध हो रहा है। अब भविष्य काल के भेद। भविष्य काल के तीन भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव भविष्य काल, हेतु हेतुमत भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं उन्हें सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इससे क्रिया के भविष्य में होने का पता चलता है, जैसे वह खाना खाएगी, बच्चे खेलने जाएंगे, वह घर जाएगा। इसमें खाएगी गी आया ना? जाएंगे, जाएंगे में गे आ रहा है ना बच्चों?
1: जी गुरुमा।
0: ये हम लोग को सामान्य भविष्य काल का बोध हो रहा है। डॉली तुम बताओ सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं?
1: क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं।
0: दूसरा, संभाव भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चले उसे संभाव भविष्य काल कहते हैं। इसमें क्रियाओं का निश्चित पता नहीं चलता, इसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है, जैसे शायद कल सुनील आगरा जाए। इसमें क्या आ रहा है? शायद जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है बच्चों?
1: जी गुरुमा।
0: पूजा तुम बताओ संभाव भविष्य काल किसे कहते हैं?
2: क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं।
0: बहुत अच्छा। डाली तुम उदाहरण दो।
1: शायद चोर पकड़ा जाए, शायद आज रात वर्षा हो।
0: डाली शायद चोर पकड़ा जाए नहीं होगा, शायद चोर पकड़ा जाएगा होगा। ठीक है डाली?
1: जी गुरुमा।
0: अब तीसरा, हेतु हेतुमत भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, जैसे यदि छुट्टियां होगी तो मैं आगरा जाऊंगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, वह आए तो मैं जाऊं। ठीक है, यदि छुट्टी होगी तो मैं आगरा जाऊंगा, नहीं होगी तो वो आगरा नहीं जाएगी। ठीक है पूजा तुम बताओ हेतु हेतुमत का उदाहरण दो।
2: वह पढ़ेगा तो सफल होगा, यदि शत्रु हमला करेंगे तो मुंह ही खाएंगे।
0: यदि शत्रु हमला करेगा, करेंगे नहीं होगा, करेगा तो मुंह की खाएगा। ठीक है बच्चों?
1: जी गुरुमा।
0: आप लोग को समझ में आ रहा है?
1: जी गुरुमा।
0: ठीक है, भूतकाल। भूतकाल के छह भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। डाली तुम बताओ भूतकाल के कितने भेद होते हैं?
1: भूतकाल के छह भेद होते हैं।

0: क्या क्या होते हैं?
1: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिप्त भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल।
0: बहुत अच्छा। पहला सामान्य भूतकाल, जिससे बीते हुए समय में क्रिया का होना पाया जाए किंतु समय का निश्चय ना हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध नहीं होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार बोलने से या लिखने से पहले हुआ। जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आते हैं, वे सामान्य भूतकाल होते हैं। जैसे मैंने गाना गाया, खिलाड़ी खेलने गए, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। पूजा तुम बताओ सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं?
2: जिससे बीते हुए समय में क्रिया का होना पाया जाए किंतु समय का निश्चय ना हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं।
0: डाली तुम उदाहरण दो।
1: मनोज घर गया, पानी गिरा।
0: मनोज घर गया, पानी गिरा, ये हम लोग को सामान्य भूतकाल का बोध हो रहा है। ठीक है बच्चों?
3: जी गुरु माँ।
0: अब दूसरा आसन भूतकाल। आसन का अर्थ होता है निकट। आसन का अर्थ क्या होता है? निकट। ठीक है बच्चों?
3: जी गुरु माँ।
0: जिस क्रिया के अभी अभी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चले, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार की निकट समय में समाप्ति का पता चले, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूँ, मैंने सेब खाया है, अध्यापिका पढ़ कर आई है, उसने दवा खाई है, ये सब हम लोग को आसन भूतकाल का बोध हो रहा है। ठीक है बच्चों?
3: जी गुरु माँ।
0: डॉली तुम बताओ आसन भूतकाल किसे कहते हैं?
1: जिस क्रिया के अभी अभी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चले, उसे आसन भूतकाल कहते हैं।
0: पूजा तुम उदाहरण दो।
2: राधा गई है, मैं खाना खा चुका हूँ, मेरा मित्र मेरे घर आया है।
0: तीसरा पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। कार्य के पूर्ण होने के स्पष्ट बोध को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं, वो पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे वह दिल्ली गया था, इसमें गया था क्या हो रहा है? पूर्ण भूतकाल। ठीक है बच्चों?
3: जी गुरु माँ।
0: बच्चा आया था, उसने श्याम को मारा था, इसमें गया था, आया था, मारा था, इसमें हम लोग को पूर्ण भूतकाल का बोध हो रहा है। डाली तुम उदाहरण दो पूर्ण भूतकाल का।
1: मैंने उसे अपना पुस्तक दी थी, वे विद्यालय गए थे।
0: वह विद्यालय गया था, थे नहीं होगा। ठीक है बच्चों?
3: जी गुरु माँ।
0: ठीक है। अपूर्ण भूतकाल। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता ना चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं, वे अपूर्ण भूतकाल होते हैं। जैसे मोहन मैदान में घूम रहा था, वह हॉकी खेल रहा था, सुनील पढ़ रहा था, ये हम लोग को अपूर्ण भूतकाल का बोध हो रहा है। पूजा तुम बताओ अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं?
2: जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं।
0: डाली तुम उदाहरण दो।
1: सुरेश गीत गा रहा था, चिट्ठी लिखी जाती थी, वे समाचार देख रहा था।
0: वे नहीं होगा डाली, वह समाचार देख

0: सीख रहा था। ठीक है बच्चों?
1: जी गुरु माँ।
0: आप लोग को समझ में आ रहा है?
1: जी गुरु माँ।
0: ठीक है, अब पांचवा संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से अतीत में हुए या करे हुए कार्य पर संदेह प्रकट किया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं वे संदिग्ध भूतकाल होते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने पर संदेह हो कि वह पूरा हुआ था या नहीं उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वे क्रिकेट खेले होंगे, बस छूट गई होगी, तू गया होगा, खेले होंगे, गई होगी, गया होगा, ये सब हम लोग को संदिग्ध भूतकाल का बोध हो रहा है। ठीक है बच्चों?
1: जी गुरु माँ।
0: डॉली तुम बताओ संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं?
1: क्रिया के जिस रूप से अतीत में होने या करने हुए कार्य पर संदेह प्रकट किए जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं।
0: ठीक है बच्चों। छठा हेतु हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से हुआ नहीं उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। इसमें पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। पहली क्रिया तो पूरी नहीं होती लेकिन दूसरी भी पूरी नहीं हो पाती। जिसमें क्रिया के होने में कोई शर्त पाए जाए उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता, यदि मैं आता तो वह चला जाता, ये सब हम लोग को हेतु हेतुमत भूतकाल का बोध हो रहा है। पूजा तुम बताओ इसका उदाहरण दो हेतु हेतुमत भूतकाल का।
2: मोहन आता तो मैं साथ जाता, यदि मैं समय स्टेशन पर पहुंचता तो गाड़ी में चढ़ जाता।
0: डाली तुम बताओ हेतु हेतुमत भूतकाल किसे कहते हैं?
1: क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया हो सकता था लेकिन दूसरी क्रिया के वजह से हो नहीं सका उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं।
0: ठीक है बच्चों, हम अपने अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले प्रोग्राम में कुछ नया अध्याय लेकर उपस्थित होंगे। नमस्ते।
1: नमस्ते गुरु माँ।
3: श्रोता यतिन्जल प्रस्तुत थियो अनुकुमारी गुप्ताबाट हिन्दी भाषा पाठ। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। साथै यस समय श्रोताहरूले हामीलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज अनि न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता अब प्रस्तुत छ एनसीईआरटी माथि तयार पारिएको एक प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश।
3: और मैं अजीत। नमस्कार। राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश बिकारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
3: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
3: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव ओगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
3: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
3: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
3: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी

0: गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
0: जी जी जी गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियां जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो बिमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
0: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
1: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
0: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
1: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहाँ NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
0: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
1: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
0: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
1: जैसे
0: प्रकृति से जुड़ना, यानी के पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
1: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
0: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
1: जैसे
0: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
1: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
0: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
1: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं था कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थातू बुलाती हूँ। कभी कभी थातू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। थातू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
3: देखो बरसात हो रही है, चलो।

0: मछलियाँ थातु और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियाँ कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थातू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थातू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थातू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
1: अब सो जाओ।
0: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थातू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनकी जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम थातू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारीगण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी

0: गोलीबारी कर रही थी।
1: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
2: हाँ
0: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
3: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे, उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
0: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
3: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
0: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
3: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
5: जी सूबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
5: जी सूबेदार साहब।
4: बोले सोनिहार।
5: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
6: भतीजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
7: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थीं और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्ष दर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहाँ हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
0: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
1: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
5: आज सुनते हैं कार्यक्रम लिटिल बुली।
6: वंस अपॉन अ टाइम, नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो, देयर वाज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी। although he wasn't very big, he was strong. And he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He

थी, उनका ऑफिस भी खाली रहता था जो घर के पास ही था। दिन में बाहर धूप होने के कारण सब वहीं इकट्ठा होते थे, फिर खूब धमाक चौकड़ी मचती थी, लड़ते भिड़ते रोते हंसते सब अपने अपनी समस्या का समाधान कर लेते थे। वो दिन बहुत याद आते हैं, वाकई वो दिन बहुत याद आते हैं। जब छोटे रहते हैं तो कुछ इतनी ज्यादा चीजें सोचते नहीं है, अभी लड़ाई होती है और अभी मिल जाते हैं और अपने मन में कोई बातें इस तरह से नहीं पालते। हालांकि हमने नानी के बारे में जब पूछा कि कौन सा गीत सुनाया जाए तो दोनों ही गीतों की फरमाइश आई और कहा गया कि वे दोनों ही गीत सुनने चाहिए। आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुना, सही जवाब हमारे साथी ने दिया और हमारे साथी कह रहे हैं कि बात तो समय की है, जब हम अपने दोस्तों को घर से बाहर खेलने के लिए बुलाया करते थे उसके भी कोड वर्ड हुआ करते थे, सीटी बजाना, कोयल की आवाज, टक टक की आवाज निकालना आदि, वो सब आवाज मेरे अंदर बैठी है बैठा मेरा दोस्त सुन लिया करते थे और तुरंत बाहर खेलने आ जाया करते थे। तो इस तरह से होता था ये काम कि किस तरह से, क्योंकि घर से बाहर निकलने की मनाही होती थी धूप में। हाँ, हालांकि नानी की इतनी बातें हो रही हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना दोनों ही गीत आपको सुनवा दिया जाए। तो ये सुनवा रहे हैं दूसरा गीत, बताइए किस फिल्म का ये गीत है। और इसी नाम से एक और फिल्म बनी, उसमें भी बच्चों का एक गीत है, अगर आप वो भी बता सकें तो क्या ही अच्छा होगा।

मासूम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रानू मुखर्जी की आवाज में। और हमने ये पढ़ा, हमारे साथियों ने कमेंट किया हुआ था कि भाई नानी का एक गीत तो सुनवा दिया लेकिन दूसरा गीत आपने नहीं सुनवाया। और हमारे बहुत से साथी तो रूठने का प्लान बना रहे थे लेकिन ये अच्छा हुआ कि उनका प्लान नहीं बन पाया, क्योंकि छुट्टियों में नानी की बातें दो बार ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वही हमारे साथी ने बहुत सारी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे दूसरे गीतों की फरमाइश भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्योंकि शब्द जो हों उनसे आधारित गीत ही हम सुनवा सकते हैं। हमारे एक और साथी ने बताया कि परिवार की बात चल रही है तो भाभी जी को ट्रेन से बुलवा लीजिए और मामा जी को रॉकेट पर घूमने चलते हैं। भाई दोनों काम करेंगे तो नानी जी के घर पे

बन रहेगा। तो इसलिए अभी इस कार्यक्रम में हम बता रहे हैं कि हमारी साथी कह रही कि आज जीवन का संध्या समय सुनहरे बचपन की मासूम अलहड़ बातें याद करने से सुखमय हो जाता है। प्रदूषण रहित सृष्टि का सानिध्य, नदी में नहाना, मछलियां देखना, नीम के पेड़ पर बंधे झूले पर झूलना, अलग अलग तरह के पशु पक्षी देखना, विशाल वटवृक्ष की छाया में नानी के हाथ का घर का बना मक्खन और रोटी का नाश्ता, अमराई के आम खाते खाते सभी रिश्तेदार भाई बहनों के मेले में छुट्टियां कैसे गुजर जाया करती थी पता ही नहीं चलता था। वाकई वो दिन किस तरह से गुजरते थे हमें पता नहीं चलता था, और शायद इस वजह से भी गर्मियों की जो छुट्टियां हुआ करती थी वो बड़ी छोटी लगती थी। हमारे साथियों ने बताया कि एक दूसरा जो मासूम फिल्म है वो भी है, लेकिन हमारे साथी थोड़ा ज्यादा दोनों मतलब उन्होंने गीत पसंद किए, क्योंकि मासूम नाम से तो तीन फिल्में बनी हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि मासूम में लकड़ी की काठी वाला गीत है, और एक और साथी ने बताया छोटा बच्चा जान के कोई ना आंख दिखाना रे, ये भी मासूम फिल्म का ही गीत है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कांच का कंचा, माचिस की अलग अलग छाप वाली, लोहे का पहिए को सरिये से चलाना, हाथों में चलने वाली तार की दो पहियों वाली से जुड़ा हुआ ऊपर तक छोटा स्ट्रिंग वाली हाथों से चलाकर तार की गाड़ी मैंने अपने हाथ से बनाई थी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुनाया, बिल्कुल सही आपने बताया, और इसके बाद मासूम फिल्म का गीत भी हम सुन चुके हैं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि घर में ही खेलने के लिए अंताक्षरी, लूडो, चोर सिपाही, वजीर बादशाह, कैरम, 3-2-5 आदि खेलों से नाना नानी, मामा मामी, मौसी सभी दिल बहला लेते थे। शाम को 4 बजने की प्रतीक्षा रहती थी। एक और साथी कहने कि नानी की डांट तो नहीं पड़ी, पर उनका वो 54, 58 और 1 रुपए वाला बड़ा याद आता है कि जाओ कुछ लेकर खाना, और वो फ्रॉक के लिए उनका कपड़ा लेकर आना, अच्छी तरह से सिलवाना मम्मी से। दादी भी नहीं डांटती थी, प्यार ही ज्यादा पाया। हाँ, कभी कभी हम गीले पोछे पर चलते और भाई बहन लड़ते तो जरूर कोई ना कोई पीटता। दोनों ने डांट तो नहीं खाई, सीधा पिटाई खाई है, लेकिन काम भी कुछ ऐसा ही रहा है, तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। बस हम कर सकते हैं एक काम कि कुछ खेलों को याद कर लें। चलिए सुनाते हैं आपको ये खेल से जुड़ा गीत। हमें बताइए कि किसने लिखा है ये गीत और किस फिल्म से हमने लिया।

मैंने नहीं तो

ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, नहीं लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल पूछ लें। देखिए, इस गीत में कई बार ये कहा गया कि अच्छी तरह से किया नहीं गया, जब वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं तो अच्छी तरह से आंख बंद नहीं की और चुपचाप देख लिया गया, वहीं जब उसे ढूंढ लिया जाता है तो भी कहा जा रहा है कि हम इस बात को नहीं मानते। तो इस तरह का खेल में कौन किया करता था? कि आप में से कोई ऐसा है जो ये किया करता था, खेल में एक बार पकड़े जाने के बाद कहता था कि हम नहीं मान रहे या हम नहीं खेल रहे, और इस तरह से रूठ जाता था, या घर के बड़ों को बुला के ले आता था कि भाई देखिए ये हमारे साथ इस तरह का काम करे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। तो क्या आप ऐसा करते थे, थोड़ी बड़ी बेईमानी करते थे खेल में, हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारे मामा लोगों ने कॉमिक्स बहुत सारी इकट्ठी करके उनको बाइंड करके रखा था, तो दोपहर में तो कहीं निकलने का सवाल ही नहीं था, हम लोग तो बस उसे ही पढ़ते रहते थे। हमारे एक साथी याद कर रहे हैं अपनी नानी को, जो एक पैसों की थैली अपनी कमर में खोंस कर रखती थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाथ का पंखा भी झला है, पंखे का फ्रेम आता था, उसे हमने क्रोशे से बनाया है। गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल में जब लाइट नहीं थी तो गर्मी लगने पर हम दालान में लगे नीम के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते थे और अपनी हमउम्र मौसियों के साथ बड़े मजे करते थे। हमारे एक साथी ने सत्य घटना बताई कि बरसों पहले रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के लिए छोटी से रूप में बड़े मटके और लंबी मिट्टी की पानी का बर्तन, जिसे कोठी गुजरात में कहा करते हैं, कोई बुजुर्ग बैठे मुसाफिरों को गिलास में पानी पिलाते थे, कोई 2-3-5-10 पैसा देते थे, निःशुल्क रेलवे की तरफ से व्यवस्था होती थी। स्टेशन में छोटी आधी गोल टंकी होती थी, ऊपर पानी का नल को दबाकर खड़े खड़े पानी पी सकते थे, तो नल के ऊपर का गोला उसे दबाते थे तो पानी आता था। मैंने बचपन में देखा था, एक बार एक बुजुर्ग दादा पानी पी रहे थे तो उनकी तरफ छिप गई और फिर वो बोल रहे थे कि बस अब नहीं, लेकिन वो पानी बंद ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद उन्हें हमने बताया कि गोला छोड़ेंगे तो पानी रुकता है, तो किसी ने आवाज दी, दादा आप नल की वो गोले को छोड़ दीजिए, तभी पानी अपने आप रुक जाएगा। और पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग ऐसे भोले भाले होते थे, ऐसा हमारे साथी ने बताया। हमारे एक और साथी बता रहे कि रात की छत, खुले आसमान के नीचे चारपाइयों पर लेटना, तारों को गिनना, सूरज ढलते ही मैदान आबाद हो जाते थे, न कोई होमवर्क की चिंता, न सुबह जल्दी उठने का डर, बस गलियों में क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई या गिल्ली डंडा। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन वो धूप में तपती दोपहरी वाली मस्ती भी एक अलग ही किस्म का सुकून देती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था, क्योंकि नानी के घर जाते थे वो भी रेलगाड़ी से, उस पर भी यदि विंडो सीट मिल गई तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती थी, लेकिन भाई बहनों से लड़ाई भी होती थी और फिर बारी बारी से सब बैठते थे, सैर सपाटा, पिकनिक, बाग बगीचा, सब कुछ जैसे पीछे छूट गया, क्योंकि अब तो स्वरूप भी बदल गया बहुत सारी चीजों का। और एक साथी कहती है कि गर्मी की छुट्टी का और रेलगाड़ी का

बहुत पुराना नाता है। बचपन में जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम कैसे खुश हो जाते थे कि अब नानी दादी के गांव जाने को मिलेगा। वे दिन सैर सपाटे के थे, अब कहां चले गए पता नहीं चला। और हमारे साथियों ने बहुत से गीतों के बारे में लिखा है कि कौन कौन से गीत हो सकते हैं। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके लिस्ट में से कितने गीत आज के इस कार्यक्रम में अब तक शामिल हुए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, बताइए किसकी आवाजें हैं इसमें।

सुजाता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में। हमारे साथी कह रहे कि पहले के समय में फिल्म देखकर जो आते थे उसकी स्टोरी सुनाने का भी तो रिवाज था। हाँ, ये रिवाज तो अब भी बना हुआ है। और हमारे कौर साथी कह रहे कि मेरे गानों की लिस्ट में से 6 गाने बच चुके हैं, किसी की लिस्ट में 4 में से 2 गाने शामिल हो चुके हैं, तो किसी की लिस्ट में से कुछ गाने शामिल हुए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो आगे के गाने आएंगे वो उनकी लिस्ट के गानों में से ही होंगे। हमारे साथी कहने कि गर्मी की छुट्टियां बचपन की सबसे मीठी यादों का खजाना होती है। जैसे ही छुट्टियां शुरू होती मन में नानी के घर जाने की खुशी उमड़ पड़ती थी। रेलगाड़ी का सफर अपने आप में एक उत्सव सा लगता था। खिड़की से भागते पेड़, खेत, छोटे छोटे स्टेशन और कुल्हड़ वाली चाय आज भी यादों में मुस्कान भर देती है। आज समय बदल गया है लेकिन गर्मी की छुट्टियों के वी मधुर स्मृतियां आज भी मन को ठंडी छांव जैसा सुकून देती है। वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है कि आजकल के बच्चे मोबाइल के मिसयूज में लगे रहते हैं, पूरे टाइम स्क्रीन में लगे रहते हैं, वो तो ये सारी गर्मी की छुट्टियों का आनंद नहीं लेते। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना होगा कि इसमें हमारी भी तो कोई गलती है, क्योंकि अगर हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है तो वो जो सामने आएगा वही सीखेंगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब छोटे थे तब वेकेशन में नाना नानी या दादा दादी के घर जाते थे, ट्रेन में सबसे पहले खिड़की वाली सीट को हासिल कर लेते थे। पेड़ को पीछे की ओर जाते देखने में मजा आता था। मन में सवाल ये भी उठता था कि सूरज गाड़ी के साथ क्यों और कैसे आता जाता है। ट्रेन में खाने पीने की चीज लाने वाले सेल्समैन को देखकर लालच भी होता था, पर असली मजा तो घर से लाए हुए थेपले और अचार में ही आती थी। अरे, आप जब ट्रेन का सफर करते थे तो क्या लेकर जाते थे अपने साथ खाने के लिए, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको ले चलते हैं ट्रेन के सफर पर। बताइए किस फिल्म का ये गीत है।

परिणीता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी कह रहे हैं कि खेलों में एक बेईमान का होना एक अलग ही मजा देता था। वाद विवाद ना हो तो क्या बचपना। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कई बार बहुत सी मतलब बेईमानी तो थोड़ी बहुत करते थे, लेकिन बाद में कह दिया करते थे कि उन्होंने झूठ बोला है। तो इस तरह की मासूम बेईमानियां होती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम लोग घर से चावल, भुजिया, रोटी, आलू की भुजिया, गुजिया, ठेकुआ, चिप्स, बहुत सारा खाना लेके जाते थे, पेपर ले जाते थे, पानी ले जाते थे। भाई जो जाते थे इतनी खुशी होती थी, पर जब वापस आना होता था तो बड़ा दुख होता था। लेकिन क्या करें, उसके लिए भी तैयारियां होती थी नानी की तरफ से या दादी की तरफ से, जहां भी हम जाते थे। और मन में कुछ टीस की भाव होते थे, क्योंकि अगर गाड़ी हो सवेरे की तो जाना होता था। चलिए सुनते हैं वो गीत, बताइए किस फिल्म का।

लैट साहब फिल्म का ये गीत आपने सुना और जैसा इसमें कहा गया भी समय जब होता है तो जाना ही होता है, तो छुट्टियां खत्म होती है तो हम भी लौटते हैं और कार्यक्रम का वक्त भी हो चुका है तो हमें भी इस कार्यक्रम से लेनी होगी इजाजत। आप सभी बने रहिए विविध भारती के साथ, क्योंकि विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहता है 24 घंटे।

0: CAC 100 dipped nearly 0.2% a short while ago. The Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, in collaboration with the Ministry of Petroleum and Natural Gas today launched an integrated hydrogen-powered shuttle bus service in the national capital to reduce fuel consumption and promote the use of public transport. The shuttle service will operate on all working days during peak office hours. It will provide seamless and environment-friendly last-mile connectivity between Central Secretariat and Sevatirtha Metro stations and key government establishments in the Central Vista region. In badminton, India's top men's doubles pair of Sattvic Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals of Thailand Open. The Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami with 21-12, 21-13 in Bangkok today. Later in the day, Lakshya Sen will face Thailand's Kunlavut Vidithsarn in the men's singles quarterfinals. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings at Ekhana Stadium in Lucknow this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Earlier, Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Tilak Verma was adjudged player of the match. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defence, petroleum and investments. BRICS foreign ministers meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NEET-UG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rothindra Bosu elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvic Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और विपक्षी व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और बिंदन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
3: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कम्प्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
5: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
6: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक

0: बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जलशोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जनकल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। क्वांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
3: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
1: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेन्द्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ही अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हामी आकाशवाणी को गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। साथै यस समय श्रोताहरूले हामीलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 MHz अनि न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, हामी उपस्थित भएका छौं विभिन्न कलाकारको स्वरमा नेपाली लोकगीतहरू लिएर। त सर्वप्रथम हजुरहरू सम्पूर्णलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत अभिवादन जनाउँदै सुनाउन लागिरहेका छौं यस पहिलो गीतलाई कलाकार नारायण राईको स्वरमा। त आउनु श्रोता, सुनाऊ यो गीत।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार कर नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और बिंदन का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबुधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि यह बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रूपये से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सिविल जल शोधन से जुड़ी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। केंद्र ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षण में 20 नमूनों में से 13 में वायरस पाया गया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विती दसर्न से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is in Abu Dhabi on the first leg of a six-day tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Prime Minister Modi has since met President Sheikh Mohammed bin Zayed, with energy cooperation and bilateral trade high on the agenda. The talks took place amid global supply disruptions linked to the ongoing conflict in West Asia. In his opening remarks, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on the UAE, describing them as completely unacceptable. Addressing President Sheikh Mohammed bin Zayed as brother, he praised the resilience shown by the UAE leadership during challenging times, reaffirmed India's support for the Emirates, and said dialogue and diplomacy remain the only path forward in the current period of global conflict.
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है. भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है. भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा.
3: The National Testing Agency, NTA, has announced that the Medical Entrance Exam, NEET UG 2026, will be reconducted on the 21st of June. Earlier, the exam, which was held on the 3rd of this month, was cancelled due to alleged paper leak, and the CBI is investigating the matter. The exam conducting agency also requested candidates and parents to rely only on the official channels of NTA. Meanwhile, Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said students are the priority of the government and the centre is sensitive towards them. He added that NEET UG examination will be conducted in computer-based test CBT mode from next year instead of existing OMR-based mode. The External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Addressing the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 in New Delhi, Dr. Jaishankar said the breadth of this engagement reflects the importance that all leaders attach to strengthening multilateral cooperation in a rapidly changing world. He further said there is an urgent need to reform the international financial architecture. Earlier, Dr. S. Jaishankar met the Foreign Minister of Iran, Abbas Araghchi, in New Delhi today. In a social media post, Dr. Jaishankar said both leaders discussed the situation in West Asia and its implications. He said they also exchanged views on bilateral issues of mutual interest. He also appreciated Mr. Araghchi's participation in the BRICS Foreign Ministers Meeting 2026. The External Affairs Minister today met Foreign Affairs Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Barilla. In a social media post, Dr. Jaishankar said both leaders discussed cooperation, focusing on health, development partnership and capacity building. The leaders also exchanged a memorandum of understanding on holding regular consultations between the foreign ministries of both countries. BJP MLA Rotendra Boshu has been elected unopposed as the new Speaker of the West Bengal Legislative Assembly. Boshu, representing Kuch Bihar South as a legislator of the BJP, registered his maiden victory in the recently held assembly polls. Senior AIADMK legislator A. Anbaragan has been appointed as the pro tem Speaker of the 16th Puducherry Legislative Assembly. The appointment was made by the Lieutenant Governor on the recommendation of the Chief Minister. In badminton, India's top men's doubles pair, Sattvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty, advanced to the semi-finals of the Thailand Open. The Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami 21-12-21-13 in Bangkok today. Later in the day, Lakshya Sen will face Thailand's Kunlavut Vithitsern in the men's singles quarterfinals. And with that, we end this news bulletin.

मन भवन से आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर और मन भवन में पहली फरमाइश जो हम ले रहे हैं वो हमें भेजी है शेख मूसा मोहसिन सनावाद से और इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है। फिल्म है कांच और हीरा और आवाज है रफी साहब की।

0: सभी को प्रणाम। मेरा नाम है विभा रानी। मैं एक फिल्म और थिएटर एक्टर हूँ और मैथिली और हिंदी के लेखक। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभिन्न हिस्सा का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रही हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, तो आकाशवाणी दरभंगा में मैंने कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम किया। मैथिली ड्रामे किए, हिंदी ड्रामे किए और कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैं वहाँ अनाउंसमेंट करती थी। लेकिन थोड़े ही समय में आकाशवाणी और रेडियो ने मुझे जो दिया वो आज तक मेरे लिए एक नियमत की तरह है। परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, रवानगी, कैसे किस बात को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इन सब की जानकारी मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो से मिली। और आज जो कुछ भी आप मुझ में पा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं इस रेडियो का हिस्सा है, उसका योगदान है, उसका सहयोग है। और रेडियो सुनना कभी मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
1: मन भावन सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। और मन भावन की फरमाइश हम पूरी करने जा रहे हैं विजय सुलकर की, रतन माला सुलकर की, कुमकुम सुलकर की। और ये महाराष्ट्र से भेजा है इन्होंने और गीत सुनना चाहते हैं ब्लफ मास्टर का, ये बहुत ही खूबसूरत गीत।

जी हाँ, मन भावन सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर कुछ श्रोता हैं जिनके नाम हम जरूर पढ़ना चाहेंगे। हम तक पहुंचा है संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मेहनत मक्कर, भारत मक्कर, कमल सहानी पिंगावाला चौक जालंधर पंजाब से, हरजिंदर सिंह भाटिया हैं खेल बाजार पानीपत से, नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से, पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का। और अगली फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है कैनॉट प्लेस दिल्ली से माहिरा मलिक, हिबा आया जोया जैनब मरियम, और कहती हैं शुक्रिया। और गीत की फरमाइश की है फिल्म चांदनी का ये गीत, लेकिन फिल्म चांदनी का एक और गीत मैं आपको सुनवा रही हूं और वो गीत भी बहुत खूबसूरत है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

3:32 ठीक 44 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ, मन भावन और ईमेल आईडी है मन भावन की fmgoldaiadelhi@gmail.com, जहां आप हमें मेल कर सकते हैं। और फिलहाल बहुत सारे श्रोता हैं जिनके नाम हम लेना चाहेंगे। जिला खुरगैन सनावाद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप मन भावन, और मन भावन की अगली फरमाइश हम पूरी करने जा रहे हैं। ये हमें भेजी है पारसमनी रेडियो श्रोता क्लब से, और ये हमें बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार है, रामदेवरा से दिनेश चौहान है, डांगरी से बाबू राम जयपाल है, खलीफों से खुदा बख्श खलीफा, रेडियो दीवाना क्या बात है। तो आपकी फरमाइश है फिल्म ना छूटे संसार से ये बेहद खूबसूरत गीत।

सभी को प्रणाम। मेरा नाम है विभा रानी। मैं एक फिल्म और थिएटर एक्टर हूँ और मैथिली और हिंदी के लेखक। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभिन्न हिस्सा का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रही हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, तो आकाशवाणी दरभंगा में मैंने कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम किया। मैथिली ड्रामे किए, हिंदी ड्रामे किए और कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैं वहाँ अनाउंसमेंट करती थी। लेकिन थोड़े ही समय में आकाशवाणी और रेडियो ने मुझे जो दिया वो आज तक मेरे लिए एक नियमत की तरह है। परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, रवानगी, कैसे किस बात को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इन सब की जानकारी मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो से मिली। और आज जो कुछ भी आप मुझ में पा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं इस रेडियो का हिस्सा है, उसका योगदान है, उसका सहयोग है। और रेडियो सुनना कभी मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत

3:46 और ठीक 55 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर मन भावन और देविका है आपके साथ। और अगली फरमाइश जो मैं पूरी करने जा रही हूं वो हमें भेजी है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरक्रीत, राहुल, गुरशब्द सिंह। राहुल क्या बात है, और इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत गीत की फरमाइश की है, फिल्म आशा का ये गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: 3:53 और 40 सेकेंड। जी हाँ, मन भावन सुन रहे हैं आप और सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और

बहुत सारे श्रोता हैं जो बहुत प्यार करते हैं आकाशवाणी को, और क्योंकि आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो एक श्रोता है हमारे जिन्होंने हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी बात लिख के भेजी है। कहते हैं कि रेडियो के साथ उठता हूं, इसी के साथ सोता हूं। जब सुनता हूं नाम अपना तो बहुत खुश होता हूं। कभी फरमाइश पूरी ना हो तो मायूसी में आपक होता हूं। मेरा नाता ही कुछ ऐसा है रेडियो से। जी हाँ जनाब, मैं रेडियो श्रोता हूं। रवि कुमार राहुल है, ये हमें हरियाणा से लिख के भेजते हैं, और हम तक जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां, लड्डू जहां, टुकटुक जहां और मक्कान जहां है। मसूरी रो रेडियो श्रोता क्लब जो है बाजार रोड से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शाबिस्ता मोहम्मद, नईब पलक लुबना और यश मंसूरी है। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा है। होली चौक अपना नगर से हम तक भेजा है जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल ने। आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनमर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी है। और हम तक नरेश चिक, रेखा चिक, करण चिक, अल्पेश, सृष्टि यादव, सवि यादव, संगम विहार, हनुमान मंदिर से लिखते हैं। और आखिरी जो फरमाइश है जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली नारंग ने सहारनपुर से, और इस गीत की फरमाइश की है जी हाँ फिल्म बरसात की एक रात से।

नमस्कार फौजी भाइयों, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम शौर्य गाथा में आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना गायक कलाकार अमित त्रिवेदी की आवाज में, फिल्म केदारनाथ से।

आकाशवाणी के गांतोह केंद्र से आप सभी सुन रहे हैं फौजी भाइयों को समर्पित कार्यक्रम शौर्य गाथा। तो आइए कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये अगला गाना फिल्म शादी में जरूर आना से गायक कलाकार यसीर देसाई और आकांक्षा शर्मा के युगल आवाज में।

प्रस्तुत गीत सुन रहे थे गायक कलाकार शंकर महादेवन की आवाज में फिल्म लक्ष्य से। पहुंचे दोस्तों, इसी के चलते आइए सुनते हैं यह अगला नगमा फिल्म कबीर सिंह से गायक कलाकार अरिजीत सिंह की आवाज में।

फौजी दोस्तों, कार्यक्रम शौर्य गाथा में सुनाने जा रहे आज का यह अंतिम गाना गायक कलाकार सोनू निगम और श्रेया घोषाल के युगल आवाज में फिल्म परिणीता से।

फौजी दोस्तों, इसी गीत के चलते कार्यक्रम स्वर गाथा का निर्धारित समय यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और गीतों के साथ। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।

बोतल न लेन का चिप्स प्लास्टिक पोंग न कायुसा वारतोरेम आसियम जुक्सियो अनन मातबा आरिजों बु जर्थाप मातलेल बु सोंगसा टेक्सी बुसा तन लम लम लाकाइनन सिम दोंग जुगगत बु गनलेन तिमचुक बु आरिंकत गम तुमरोस रे हुनन आरिजों बु रिम रेम जक्सों ममात उरिजों बु रेम अजुक अजुक थोबु निमो प्लास्टिक वेच मैनेजमेंट लॉमन लकायनन सिते दोला कायनन जर्थाप माथोबु उरे पोंगरेम अजिक्सा लॉमयु पोंगकाला कायनन जर्थाप माथखछियो अभियान आरेरेम थाल लुंगतार कोनसुंग सतन का कायुसा ज्याकर जुंग छोंगजत कृथक नला सिम आरे चोंग तदोसा बामल्यांग पोंगका लासत बग बांबू गमसते तदोसा बामल्यांग कताप मुगुन स कायनन लॉम पोंगकाला अजेन अजेन मुलो ग्लोंग पोंगलियम थोबु न्यामनी सर बग गाचिबु गम अतेतलिलुंग गोक्सुसा सुरोंगसा अतान थामदनसा थ्याकपेरेम अबिदो लुंगपाल श्योलादोला रेनसोंगरेम अगो लुंगजुक्स्योंग सतनका वर्मसदो पुनाल फुवाम मो वर्मपन टेंचो रोंगकपसा अमनिमका वर्मरेम अमनिम बिथोबु नि मोंगमिरका सेनोंग ओ वर्म आरे

कनकान तो इंसे बुंग हिमलु आशीवारु खेमला बा खेमला में से अंगा भागी यक्त मलम नाजिर तुम भी हैंसिंग ने सिंह थी बोंग सुमसी ते पोगा तुसी नुसी मीटर हैंसिंग ती नांसिंग लीसिंग लीसी ग्लो हल्स नु सॉर्ट एवरे तु की मीटर वेन हैंसिंग ती नांसिंग ये ची सुम्बोंग आंगासी ग्लोस लंबने अनि कान तो इंसे बुंग हिमला मनु पारी ग्रुप अच्छी गे खेमला बा खेमला में अलो यू नंबर ये आशी मुक्ति अलो यक तुम नुसी चान थी भी ही सिंह लपत खेमला बा खेमला जे आइन ले थिम्बे मु अनिगे इंखंग पंखंग तेंगोपी बा इंखंग पंखंग नु आइन थिम्बे मु ताजिंगी यक मोनु यक थुमानु यक थुम यदिम बा हुक्जु फो हारे निसामलेन पानु लंबिया रे पान ताजिंगी वा कोनिन खेपसुमला एकेंग सम्मिगेन सम्लो मांग सम्लो खेमसी यक थुमले इक्लावला वा कोना खेपसुमला आइन बा थिम्बे रे कुजु सिंगपुंग खेमला बा खेमला मासे आइन यनित नाजी तोंग में हंसी नचियंग निवों तुसी में लावरन एन यनित ठीक ना फसुबायें खेमला बा खेमला मासे आलु तेंगो पीवा इंखंग हा खेपसुम सुखिम बा सुम्यांग तुतुगें बा प्रेम सिंह तामंग गोलेरे तायुंग मा एन सुखिम कलाकार भरोसा सम्मेलन हेंसिंग नेचियंग निवुंग तुक्सी बथिम्बे कांद मनन केंद्र म पुखेवा कलमु मि मानो एन पुखेबे मु तायुंग पुखेंग मि मामा थिम्बे मु थिम्बे मु मुरुम तरेमा तुतुगेमा कृष्ण राय वेभेले आइन बथिम्बे मु सुम्यांग तुतुगेम्बा प्रेम सिंह तामंग नु कृष्ण तुतुगेमात कृष्ण राय तायुंग वे सी तंग दंग वे तेंगो पीबानु तुक्सी तापसी गंग बा अखेंचंग सुदिम बा कलाकार हा सम्मेगेन सम्मेगेन समलो हुपा हा सम्मेगेन समलो समके में पहा नु जातला बा हा करेके परिक परिक पा थिम्बे मु थिम्बे आरेन अब मंगे चु हरेन चु दिम बा में जुपसेंग तायुंग में बुकियंग में दमलन नुबल नाइबे को थिम्बे रे कुजु सिंह पोखेंगवे आइन बा थिम्बे मो सेखाई सुखिम नो हिमजे जुम्बा नेपाल लम लो नेपाल लमांग मे वे भले हना हिंदी समलो संबा सुनु सुतांग वे कर दंग दंग सुखिम बा तुक्सी तापा लंबा करे के कर सुदिम बा या मिहा तायु मे बुखे मे वे मिंगला बा या मिहा सुखिम सिवा खेनसांग के वा वा बा बांगे जुदिम बा चोक संभा के मो नाजम में तुसी अति नुव नाजम में तुसी क्या कौन थी भी मो सुखिम कल्चर हेरिटेज बोट लॉक ले चुगांग वे भले कौन बोट इन तुम सापिंग दंग मा ए नो दिमा नियारा यक तुमा नो तंग दंग करे के थक तो बा पासिंग दंग हरे तंगे में चुगांग आइन बा कुसंग थी भी मो कुसंग ले सुंग वे कौन तोगी का कौन सुखिम कलाकार भरोसा सम्मेलन इन तापा मो खा कौन लॉक ले में दुरो वे भले तापा तापा मो भले कौन सुमसी पलेंग पोखेंग खा कौन अंग कौन ना सुखिम खाम को युक्फो नु तंग मांग चुक मांग खाले बैनर सिगंग की बुंग बापू खेंगवा बा इंग भन इंग से पू खेंगवा हेले जुले अखेने आयन बा थिम्बे मसे खाय अखेन मिंगला बा अखेन तरे बा अखेन खेन मिस लिंबू भोखेन मिस स्वांग स्वांग बा जात जात बागम स्वांग स्वांग बांग हुन्छी थिदी वे हुन्छी चोदी बा करे करे करे नाजा में मेत्तिसी क्या हुन्छी एकदम चोसापी दंग हुन्छी मिजुग बा अफल्यांग अकरी एगंग फंचिंग में दुंग एगंग युग मामुन अबांगे चोवा अबांगे अखेन अतं मिक में निम्ना अखेन पामा में चुकना चो दिम्बांग में नाजम आती थी नाजम में मेतुसी केरे के कन अखेन नाजम में मसी थेंग मेले लती हिंगला पी मसी लागी मना पुंगां खा युग मामुन ने आनी के थी चोवा अखेर ओसें थोंग में तेन वा लती तेन अभिरंग युग फोले आनी ओ आमे करो बा कन हिंगला बा पान इंग सुम्यांग तुतु प्रेम सिंह तामले इंग से इंग भन चु गंग वे क्या अखरी के अखेन यरी यरी अके के दंग अनि खा वा रखे लोन दी अखरी तेन वा अखरी नाजम में तासी के अके ओसिन दंग लो मा वांग इंग ला बा पान अखेन वन वा पान यु खंग वे अगे छलो बछे इंग हंग चुरे अलकन गेन सम्मिगेल मांग सम लो खिमसी यक तुने इकलालम सब पासी खेप सुम लो

तासेम्बना गोजी राथेले प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना ग्यागाड चिकले जामलिङ ना माङटा कितेनले मिचु यो क्याप्ति दे दी प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना यार्गे थेन जिन जुङ कि छिलो चिक्तो नितो चेङा ना तार्क्याप थेन दे गोचुक्से दि चेङा नितो चेङा ना थेन दि ना माङटा यार्गे थेन छो मंडव डखे चुलोया खेपसा ये लबडा ताथरिम लबडा डक्ति दी हेखे चुलोया लेपते खेपसा थेन दीना जुंग की लेप लेम रोरम ना दीना न्यूंग न्यूंग तीछी ना ट्रेनिंग थप जुंग की या डामिंडा चीचु फिन निम्लेन दी ग्यादां अपचुले सुम्ग्या सा थेन दी स्कीम ना कुजब नरेंद्र मोदी छो के ना बो इन ग्यागार की स्किल इंडिया थेंचु क्लब ती इन दीना मी बुमले थाको की गेलेन ग्यागार ना मीमांग की स्किल ना यो क्याप रंग की थेन लो यो चु लेम ना खालचेन की यो थेन रंग की ई चु या यार्गे थेन दीना थम की थेन ले थेन मांगटा दी लबडा ड्रॉप आउट यो मेखे मिचुलो लेप लेम इन ग्यागार ना छो डोखे मंडोखे थम चेक दीना गेलेन यो क्याप खे या मांगता थेन जिंग्यू ग्यागर जुंग की स्किल इंडिया मिशन दीना लेप मांगता स्किल ट्रेनिंग सो फिन दी स्कीम ना मिनिस्ट्री ऑफ स्किल यार्गे इंटरप्रेनरशिप ता नेशनल स्किल यार्गे दीना खेपसा थप लेप लेम की थेन ले थेन दीना स्कीम नीतो चेंगा ले नीतो चीडुप आंची अनाले नीतो चीडुप्ले नीतो खेची अंग नी ग्याप्ले दी नीतो खेचीची अंग जीले मांगटा रिक्सर की थेनले थेन खालचेन ता यार्गे की छोकपो जुंग की ग्यागरना ना दी स्कीम दी लेप लेम थेन छो मंडोका देखे चुलो जोडा बोंपु ऐसा खोलो रोरम बोंपु थप ग्यागर चिकले मिमांगटा दे जामलिंग दिना मि ल छुंग छुंग चुलो काले या फोक यो लेम माथोपा जोडाना दी यो की ई चिकले ई चिकना क्याप्ते ई जेन नाया ता तादो बे खालचेन दी चिको चिकलो लेप रोरम नागो दी की थोले शेशे या लेप ग्या छिटा हे मांगटा की थेनले इन चिकले बम्पू ग्यागर ना मिचुलो काले फोक मांगटा छो डखे छो मंडखे की यो थपशे ना काले फोक दी ना यार्गे की थेनले मी यो क्याप्सा रोराम थेन यो क्याप्सा मीमांग थेन जोडा चुना यार्गे थेन मी यो क्याप्खे लो रां खासोवे थेनले छुंग छुंग छुंग छुंग यो चु फिन जोडा ना रंग की रा लो मी रे रे लो खिम चिक ना रोराम थप मांगटा लपठु चु छो डक्से या ता खिमना ले डसो ता माछुपा दी स्कीमना फिन फुम चुलो खोला चेमसे चंगडा की थेनले मेंकाना जेन यो चु रंग की फ्याछु थप फुम चुलाया डा मंडौ फ्या साछु प यो चु फिन दी ग्यागर जुंग की इन यो क्याप खेचुलो फिन यो चुना या जोडा नांगले यो चु थप दी की थेनले मिचुलो ल चेंगा ले जिपचु शेंगा सा यो क्याप दी यो ना जीबो ले गचा की जुंग ले सर्टिफिकेट दी की रोराम यो चु या थप दी की सेंटर ना ग्युगो गचा रंग की रा दी गेलेन छु दीना मिचु मिचु थम चेके गेलेन छु जोडा ना यो चु लेम लेम लापिनशे इन दी जिपचु ले गपचु सा लेप ना थिंटा यो ना थेन दीना यो शेपो माशेपो थम चेता न्यूंटा नांगले यो चु प्या थिम ना देखे ता क्यों खिम की मिचु लो फेंटो ता हे
দি ছিল নিত চেঙা না থো স্কিল ইয়ারগে তিছি নুংনুং না ফিন নিগা জডা নাংলে মি ইউ ক্যাপখেল নিত চেঙালে নিত চিরুপ সা গ্যাগার জুংকি ডিজিটাল ইন্ডিয়া স্বচ্ছ ভারত কি গচুক দি ছৌ না পাস থেন দি জুংলে তিরু আবগ্যা ফিন দি কি কালছেন কি ইউ ক্যাপ তাত কি মিছি না মিমাংল রোড়াম থপ দি মাংটা নে ড্রপ আউট কি মিল ফেনতো এ ইয়ারগে ইউ ক্যাপ খেল রোড়াম ফিন নিম ছামি ইয়ারগে থপ ধি রিংক্যাম কি থোলে দি শেষে ইয়া লেপ খে ছিটা দুঃখ মিথাম চেল তাতুই মিছি দিনা।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और बिंदु का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्र की एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि यह बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉ जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कम्प्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलालाउत वितिदसन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मिडोमेप 213.67 मिटर अर्थात 1404 किलोहर्जमा हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। साथै श्रोताहरूले हाम्रो यो प्रसारणलाई एफएम कञ्चनजंघाको 103 मेगाहर्ज अनि न्यूज अन एआईआर मोबाइल एपबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। आदरणीय श्रोता, समय यस बेला साँझको 6:05 भएको छ र अब प्रस्तुत गर्दैछौ दैनिक ग्रामीण कार्यक्रममा किडनी रोगको कारणहरू विषयमाथि प्रत्यक्ष प्रसारण अन्तर्गत फोन इन कार्यक्रम।

0: श्रोताले अहिले सुनिरहनु भएको थियो शास्त्रीय संगीतको कार्यक्रम सुर संसार अन्तर्गत हिराबाई वरोदेकरद्वारा शास्त्रीय गायन। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। समेश बेला सूर्यको घड़ी अनुसार 8:45 हुन लागिरहेको छ। रब केही क्षणमा सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समाचार क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजीमा। केही क्षण प्रतीक्षा साँच्नुहोला।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबुधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी

0: ऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फेसिस किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
2: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
4: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के 3 स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
5: अंडर द 3 पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देशभर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किये। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इन इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मॉनसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 1 डॉलर की तुलना में 21 पैसे कमजोर हो

0: होकर 95 रूपए और 97 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Met department forecasts heatwave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
3: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna, ye hamari sabse badi prathamikta hai. इस विजन में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
2: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his 5-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that it looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. We have more from a West Asia correspondent.
4: The talks yielded a wide range of agreements on energy. India Strategic Petroleum Reserves Limited and Abu Dhabi National Oil Company signed a strategic collaboration agreement to raise UAE's participation in India's strategic petroleum reserves to 30 million barrels. A long-term LPG supply

0: प्रेसोदा कार्यक्रम हिन्दी फिल्म संगीतलाई अघि बढ़ाउने क्रममा सुनाउन गइरहेका छौं यो अघिल्लो गीत गायक कलाकार सूरज जागान अनि शर्मन जोशीको आवाजमा फिल्म थ्री इडियट्सबाट।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।